0: SBS Gorkha Radio हो
1: सैन्य समुदाय मा
0: रिलायन भरी
1: ऑन एयर
0: एप मा
1: अनि स्मार्ट स्पीकर मा भन्नुहोस्
2: प्ले बीएफबीएस
0: यू बीएफबीएस गोरखा रेडियो हो।